0: तो मतलब ये हुआ
1: कि आशिक हो तो आशिक हो तो ऐसा हो कि आशिक हो तो ऐसा हो कि आशिक के आशिक के आशिक आशिक आशिक आशिक आशिक हो तो ऐसा हो कि आशिक हो तो

0: हाय।
1: सिर्फ आहें जो भरे उसको आशिक न कहो, दूर से प्यार करे उसको आशिक न कहो, गम में चुपचाप मरे उसको आशिक न कहो, जो जमाने से डरे

0: ए आशिक होतो
1: अरे जा के दिल भर होतो
0: ते आशिक होतो ऐसा हो
1: के दिल भर होतो ऐसी हो
0: जैसे मजनू जैसे परहार जैसे महिवाल रांझे है जैसा आशिक होतो ऐसा हो
1: हाँ।

0: आशिक हो तो
1: या या दिलबर हो तो
0: आशिक हो तो ऐसा हो
1: दिलबर हो तो ऐसी हो
0: आशिक
1: दिलबर
0: आशिक
1: दिलबर
0: आशिक
1: दिलबर
0: आशिक हो तो

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

0: क्या
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
0: क्या

अभिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी।

अबिन अपने सुनत पानी रउआ लोगन के अपन दिल के धड़कन कार्यक्रम फूल झड़ी।

वाइफ से हमके मिले ना ढूंढेला, गुरु बना के बना लिया चेला, हमरा के राम जी बचावे। ससुरा

0: सॉरी सॉरी।
1: हम तो हर इतना ख्याल करी और तू अपने ससुर से भेद करे। एकदम बाप पे गैल बाड़ी जौने थाली में खाए उहे में छेद करे।
2: देखी बाप मत बखानी अन्यथा ठीक ना पड़ी।

0: शान्ति आराधना र उपहारका लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी।
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास।
2: अभिन अपने सुनतानी रउवा लोगिन के आपन रेडियो स्टेशन FM अध्यात्म ज्योति 104.8 मेगाहर्ज।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नंबर 13, न्यू रोड, काठमांडू। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: FM AJ 104.8 MHz.

0: Weekend Classic Radio Show.
1: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर एक बार फिर से दिल से स्वागत करती हूँ मैं, आप ही की रुचि आपके साथ। आज के इस एपिसोड में मैं कुछ ऐसे गाने लेकर के आई हूँ जो कि प्यार में एक बार फिर से आपका विश्वास बना देंगे। आज एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, प्यार भरी कहानी के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि मेरे हिसाब से बॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री की ऑफ स्क्रीन सबसे हसीन लव स्टोरी रही है, लेकिन एक ऐसी कहानी रही है जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाए। इतनी खूबसूरत लव स्टोरी, लेकिन उतनी ही कॉन्ट्रोवर्शियल लव स्टोरी भी। ये वो जोड़ी है दैट मेड अस फॉल इन लव विद रोमांस, पैशन एंड ऑफ कोर्स लव। मैं बात कर रही हूं हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन जी की और ब्यूटी क्वीन रेखा जी की। इनके अफेयर के किस्से तो हम सब से रूबरू हैं, हमने कहीं ना कहीं ढेर सारी कहानियां किस्से इनके बारे में सुने ही हैं। बिग बी और रेखा जी की ये लव स्टोरी, क्लासिक लव स्टोरी की, फिर भी ऐसी कुछ कहानियां हैं, ऐसे किस्से हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड्स रहे हैं और मीडिया से दूर रहे हैं, उन्हें आपके सामने आज मैं लेकर के आने की एक कोशिश करूंगी। आप जानती हैं कि इन्होंने हमेशा कोशिश की कि ये लाइमलाइट से दूर रहें, पब्लिक के सामने इनका ये रिश्ता आ ना पाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि मीडिया को पता चल गया कि इन दोनों के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। बताऊंगी आपको उस किस्से के बारे में कुछ ही देर के बाद, लेकिन उसके पहले इनकी रियल लाइफ लव स्टोरी जो थी, जो लव ट्रायंगल था, उसी के ऊपर बेस्ड फिल्म सिलसिला से गाना लता दीदी और अमिताभ बच्चन जी की आवाज में सुना रही हूँ आपको, सुनिए जरा।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

सिलसिला फिल्म सिथाए गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर मैं हूं रुचि आपके साथ। और आज अमिताभ जी और रेखा जी की अनडाइंग लव स्टोरी के बारे में हम कर रहे हैं बात, और इन्हीं दोनों के कुछ बेहतरीन गाने मैं सुना रही हूं आपको। वैसे इन दोनों ने ये तो डिसाइड करके रखा था कि अपने प्यार को कभी भी किसी के सामने पब्लिकली नहीं आने देंगे। कई बार ऐसा हुआ जरूर कि दोनों ने डिसाइड किया कि पता दे क्या, सामने आ जाए क्या, एक दूसरे के साथ ही रहे क्या, लेकिन किसी न किसी कारण से ये लोग अपने रिश्ते को छुपाते ही चले गए। ये तो आप जानते ही हैं कि इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी 1976 की फिल्म दो अनजाने के साथ में, जब अमिताभ जी जया जी से शादीशुदा थे, लेकिन खबरें तो यही आती थी कि दोनों फिर भी रेखा जी के एक दोस्त के बंगलों पर मिला करते थे। अमिताभ जी हमेशा चाहते थे कि इस मामले पर चुप्पी रखी जाए, लेकिन मीडिया तो मीडिया है, कुछ छुप पाया है क्या मीडिया से। हुआ यूं था कि एक शॉट चल रहा था, और उस शॉट के दौरान अमित जी अपने को-स्टार पर बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उस को-स्टार ने रेखा जी के साथ में थोड़ा मिसबिहेव किया था, और इसी इंसिडेंट के कारण लोगों को पता चल गया कि दोनों को एक दूसरे की कितनी फिक्र है। वैसे वो कौन सा को-स्टार था जिन पर अमित जी भड़के थे, अपना गुस्सा उस को-स्टार पर निकाला था, ये तो आज तक भी किसी को पता नहीं चला है। लेकिन यश चोपड़ा जी ने भी इनके रिलेशनशिप के बारे में एक इंटरव्यू में कंफर्म किया था कि हाँ, ये दोनों प्यार में हैं, साथ हैं कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ प्यार में है। आपको पता है एक बार ऐसा हुआ था कि जया जी अमिताभ जी और रेखा जी को साथ में देख करके रो पड़ी थी, और इसे देखने के बाद रेखा जी ने डिसाइड किया था कि वो पब्लिकली जया जी को कभी भी एम्बैरस नहीं होने देंगी अपने रिश्ते के कारण, रेखा जी और अमिताभ जी के रिश्ते के कारण। ऐसा कब हुआ था कि जया जी रोई थी, वो भी रेखा जी के सामने, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं अमित जी की उस फिल्म से गाना जिसमें उन्होंने पहली बार गाना गाया था, मिस्टर नटवरलाल फिल्म से गाना। लता जी भी है साथ में और किशोरदा की भी आवाज है। सुनिए ये गाना वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर, मैं रुचि आपके साथ।

0: गोल्ड प्यालेस, शुक्लपथ न्यू रोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 42 43 736।
1: FM अध्यात्म ज्योति का लोकप्रिय कार्यक्रम प्रायोजन करना अथवा यहाँ को सेवा वा उत्पादन को विज्ञापन करना चाहनुहुने महानुभाव मोबाइल नंबर 9841289820, मोबाइल नंबर 9841289820 में संपर्क कर सकूने।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। अमित जी और रेखा जी की इस प्यार भरी कहानी को मैं आपके सामने लेकर के आई हूं आज के इस एपिसोड में। वैसे आपको पता है, रेखा जी काफी आलसी किस्म की एक्ट्रेस हुआ करती थी। आलसी नहीं तो लेट बैक तो मान ही सकते हैं इन्हें। पंक्चुअल नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं थी, तब तक जब तक वो अमित जी से नहीं मिली। सेट पर लेट आना तो इनका हमेशा का ही था, 2-3 घंटे बाद ही आती थी वो सेट पर। लेकिन दो अनजाने के सेट पर अमित जी से जब ये मिली तो उन्हें मानो देख करके एक अलग रिस्पेक्ट आई थी अमिताभ जी के लिए। वो इतने डिसिप्लिन के साथ में काम करते थे कि उन्होंने रेखा जी को भी फाइनली डिसिप्लिन रहना और पंक्चुअल रहना सिखा ही दिया। लेकिन जैसा मैं आपको बता रही थी कि एक बार जया जी रेखा जी के सामने रो पड़ी थी। हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार फिल्म का ट्रायल शो चल रहा था और उसके दौरान पूरी बच्चन फैमिली आई हुई थी और रेखा जी प्रोजेक्शन रूम में बैठी हुई थी। जया जी पहली रो में बैठ करके फिल्म देख रही थी और अमित जी अपने पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ पीछे की रो में बैठ करके ये फिल्म देख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि रेखा जी प्रोजेक्शन रूम से इन दोनों को देख सकती हैं, वो भी साफ साफ। एक ऐसा सीन आया था जिसमें अमित जी और रेखा जी का लव सीन था, कुछ रोमांस, कुछ नज़दीकियाँ दिखाई थी इन दोनों के बीच में, जिसे देखते हुए जया जी की आंखें नम हो गई थी, उनकी आंखों से आंसू आ गए थे और पोछते पोछते वो एक फिल्म को देख रही थी। और बाकी किसी ने देखा हो ना देखा हो, रेखा जी ने जया जी के आंसू देख लिए थे और उस समय रेखा जी जया जी का दर्द समझ पाई थी। एंड दैट वॉज द टाइम जब कहते हैं रेखा जी ने ये डिसाइड किया था कि पब्लिकली कभी वो जया जी को अपने इस रिश्ते के कारण एम्बेरस नहीं होने देंगी। खैर, कुछ इसी कारण से रेखा जी और अमिताभ जी के बीच में भी थोड़ी सी दूरियां आ गई थी, लेकिन ज्यादा दिन के लिए ये दूरियां चली नहीं थी। बाद में सिलसिला फिल्म इन दोनों ने साथ में की ही थी। फिलहाल सुनाती हूँ आपको सुहाग फिल्म से अगला गाना। और रेखा जी को भी अपना सुहाग मिला था, शादी भी हुई थी, फिर भी क्यों अकेली रह गई रेखा जी, बात करेंगे इसके बारे में कुछ ही देर के बाद। यू स्टे ट्यून्ड।

शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। अमिताभ जी और रेखा जी की लव स्टोरी के बारे में आज मैं आपको कुछ ऐसे किस्से सुना रही हूं जो शायद शायद आपने ना सुने हों। वैसे तो इन दोनों की लव स्टोरी जितनी इन्होंने छुपाने की कोशिश की उतनी ही लोगों के सामने और आती गई। वैसे ऐसा नहीं है कि अमित जी और रेखा जी के अलग हो जाने के बाद रेखा जी ने मूव ऑन नहीं किया। शी डिड मूव ऑन। उनकी शादी हुई थी मुकेश अग्रवाल जी के साथ। हुआ कुछ ऐसा था कि रेखा जी के फ्रेंड ने उन्हें मुकेश जी से मिलवाया था, जो कि दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन थे। दोनों मिले, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, प्यार व्यार भी हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद जब वो लंदन गए थे हनीमून के लिए, तब रेखा जी को कुछ तो गड़बड़ लगा। एंड देन शी रियलाइज्ड कि मुकेश जी क्लिनिकली डिप्रेस्ड थे, डिप्रेशन से जूझ रहे थे, काफी दवाइयां लेने लगे थे और किसी भी और औरत की तरह रेखा जी को पहले तो लगा कि वो संभाल लेंगी, किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगी। लेकिन 3 महीने के बाद मुकेश जी ने रेखा जी को ये बताया कि उनकी जिंदगी में कोई और है, और ये सुनकर रेखा जी ने मुकेश जी को छोड़ दिया। इन सब के बाद मीडिया थोड़ी ना कोई छोड़ने वाली थी। मीडिया ने काफी बात का पतंगड़ बनाया, काफी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। मुकेश जी वैसे ही डिप्रेस्ड थे और ये सब कुछ वो झेल नहीं पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। मुकेश जी के सुइसाइड का असर सबसे ज्यादा रेखा जी पर, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ पर ही पड़ा था। काफी लोग इस बात से अनजान थे कि मुकेश जी डिप्रेस्ड थे और इसीलिए जब उन्होंने सुसाइड कमिट किया तो रेखा जी को जिम्मेदार मानने लगे थे लोग। इनफैक्ट डायरेक्टर्स और एक्टर्स भी यही मानने लगे थे और इसलिए उन्हें मूवीज में भी लेना बंद कर दिया था कि शायद कोई नेगेटिविटी है रेखा जी के आसपास, शायद वो बैड लक लेकर के आती हैं अपने साथ में। लेकिन इन सब के बावजूद अमिताभ बच्चन जी थे जिन्होंने रेखा जी का साथ नहीं छोड़ा। दुनिया के सामने नहीं आए तो क्या हुआ, अकेले में सबसे बड़ा सपोर्ट बनकर के अगर कोई खड़ा रहा एक दोस्त की हैसियत से ही सही, तो वो अमिताभ बच्चन जी ही थे। और इस समय के बारे में तो रेखा जी भी खुल्लम खुल्ला बताती हैं कि वो समय जो सबसे लो समय था रेखा जी की जिंदगी में, उस समय सिर्फ अमिताभ बच्चन जी ही उनके साथ थे। क्यों इन दोनों ने कभी भी शादी का नहीं सोचा? इनफैक्ट एक समय तो ऐसा भी था जब अमिताभ जी पब्लिकली रेखा जी को अपना प्यार, अपनी जिंदगी मानने के लिए तैयार भी थे। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों कभी साथ नहीं आए, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। स्टे ट्यून्ड।

क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज एक ऐसी लव स्टोरी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि हमारे दिल में मायूसी भी पैदा करती है और खुशी की तरंग भी पैदा करती है। खुशी इसलिए कि ये प्यार इतना गहरा था और मायूसी इसलिए कि ये प्यार कभी पूरा नहीं हुआ। अमिताभ जी और रेखा जी के प्यार के बारे में हम कर रहे हैं बात। हम अक्सर यही सोचते हैं कि अमित जी ने कभी रेखा जी के लिए अपने प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। मैं बताती हूँ आपको कि इन दोनों के प्यार के बीच में हमेशा से एक और एक कैरेक्टर थी जो कि अमिताभ बच्चन जी से इतना प्यार करती थी कि उनके प्यार को जीत मिलना जरूरी ही था। मैं बात कर रही हूँ जया जी की। जब अमित जी जया जी को मिले थे तब वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे एंड जया जी वॉज अ बिग स्टार। जया जी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती थी। अमिताभ बच्चन जी भी एक फेमस पोएट हरिवंश राय बच्चन जी के बेटे थे। दोनों की फैमिलीज जो थी वो सेम लेवल पे थी, दोनों की थिंकिंग मैच होती थी, ट्रेडिशनल होते हुए भी दोनों मॉडर्न थे। दोनों के बीच में थोड़ी सी जम गई और दोनों ने शादी करने का सोचा। इनकी शादी की कहानी भी काफ़ी ही इंटरेस्टिंग थी। एक अपार्टमेंट में घाई घाई में दोनों ने शादी की थी क्योंकि जया जी के फैमिली वालों को पसंद नहीं था कि वो डेट कर रही हैं या लव अफेयर में हैं। वो चाहते थे कि उनकी बेटी जल्द से जल्द शादी कर लें एंड दैट्स हाउ इनकी शादी हो गई थी। रेखा जी अमित जी की लाइफ में काफ़ी बाद में आई थी, इनफैक्ट तब जब जया जी प्रेग्नेंट थी। अमित जी अपने फैमिली के नियम के अगेंस्ट जाकर रेखा जी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने ये रियलाइज करना शुरू किया था कि रेखा जी उनकी ज़िंदगी का सच्चा प्यार है। और एक समय ऐसा आया था जब वो चाहते थे कि रेखा जी को वो पब्लिकली एक्सेप्ट करे और जो सही है वो करे रेखा जी के साथ में भी। लेकिन यही वो समय था जब कुली फिल्म की शूटिंग चल रही थी और एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था अमिताभ बच्चन जी का, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। एक ऐसा एक्सीडेंट जो कि उनकी जान भी ले सकता था, लेकिन थैंकफुली सब ठीक हुआ और अमित जी बच गए। ये वो समय था जिस समय जया जी ने इतनी सेवा की, इतना ख्याल रखा अमिताभ बच्चन जी का कि अमित जी रियलाइज्ड कि जया जी उनसे कितना प्यार करती हैं और वो जया जी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और इस एक्सीडेंट के बाद अमिताभ बच्चन जी ने कभी भी मुड़ करके दोबारा नहीं देखा। आज तक भी लोग जानते हैं कि अमित जी और रेखा जी एक दूसरे को कितना प्यार करते थे, लेकिन जया जी का प्यार इनके प्यार से ज्यादा बड़ा था। चलिए सुनाते हैं आपको आशा जी की आवाज में अगला गाना। किशोरदा भी है साथ में, गाना है फिल्म राम बलराम से। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

कैसा लगा आपको ये शो? हर हफ्ते हम क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक। चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से, कहानियाँ और आपके पसंदीदा।

एफएम अध्यात्म ज्योतिको सन्ध्याकालीन प्रस्तुति शुभ सन्ध्यामा राज सन्ध्या।

यशोदा मैया कहती है कि जब चोरी करता है तब पकड़ कर क्यों नहीं लाती, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा यही पहले घर पहुंचता है बाद में तुम आती हो? तुम्हारे घर चोरी करने आता है या तुम्हें परेशान करता है तभी हाथ पकड़ कर लाया करो? तो गोपियां कहती है कैसे लेकर आए?

0: चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है,
1: चोरी करके भी सदा बेकसूर रहता है,
0: सर पे शैतानी का इसके फितूर रहता है,
1: सर पे शैतानी का।

कि कितनी बार तो मैंने देखा है कि तुम ही से माखन खिलाती हो, और अगर तुम ही प्रेम से माखन खिला रही हो तो ये तुम्हारे यहाँ चोरी क्यों करेगा। गोपियां कहती है हमें जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, मजबूरी है। क्यों?

0: गोपियां कहती है अब तो हम जा रही हैं यहाँ से, हमें पता है आप तो कुछ मानने वाले हो नहीं, लेकिन अब अंतिम बार हम चेतावनी दे रहे हैं। हम हर बार आपसे आकर कहते हैं अगली बार फिर हम ही दंड दे देंगे। गोपियां कहती है इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है,
1: इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है,
0: इसे समझा दे

चोरी सब करते हैं, ये तो तुरंत निकल जाता है, बाकी बेचारे पकड़े जाते हैं और मार

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: राधा कृष्ण ज्वेलर्स, विशाल बजार, पसल नम्बर 13, न्यू रोड, काठमाडौँ। राधा कृष्ण ज्वेलर्स, रोजाई मेरो सधैँभरि।
1: एफएम अध्यात्म ज्योति 104.8।

0: दिमा बुवा र सन्तानको सम्बन्ध कस्तो छ त? अब यस बारेमा थोरै मन्थन गरौं। हाम्रो समाजमा बुवालाई प्राय कडा नबोल्ने वा आफ्नो भावना व्यक्त नगर्ने पात्रको रूपमा हेरिन्छ। आमाले दुःख पाउँदा आँसु झारेर पोख्नुहुन्छ, तर बुवाले आफ्नो दुःख कहिले आँसुमा पोख्नुहुन्न। बुवाको माया देखिँदैन, तर त्यो मायाको छाया यति ठुलो हुन्छ कि त्यसले परिवारलाई जीवनभरि घाम पानी हुरी बतासबाट जोगाउँछ। वर्तमान समयको वास्तविकता, आदरणीय श्रोता, पसिना र सङ्घर्ष। हाम्रा धेरै बुवाहरू खाडीको 50 डिग्री तापमानमा पसिना बगाउँदै हुनुहुन्छ ताकि घरमा सन्तानले राम्रो शिक्षा र सुख पाउन्। आफ्नो जुत्ता फाटे पनि सन्तानका लागि नयाँ कपडा किनिदिने त्यागको नाम हो बुवा। अर्कोतर्फ वृद्धाश्रमको तितो सत्य आजको आधुनिक समाजमा एउटा नमिठो यथार्थ पनि जोडिन पुगेको छ। सामाजिक सञ्जालमा ह्याप्पी फादर्स डे भनेर पोस्ट गर्ने तर व्यवहारमा बुवा आमालाई एक्लो बनाउने वा वृद्ध आश्रमसम्म पुर्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। देखावटीपन र औपचारिकता, वर्षको एक दिन मिठाई र उपहार दिएर बाँकी 365 दिन बुवाको भावना र स्वास्थ्यको ख्याल नगर्नु वास्तविक धर्म हुन सक्दैन। डिजिटल युगमा फोटोको लाइक र कमेन्ट भन्दा बुवासँग बिताएको 10 मिनटको प्रत्यक्ष कुराकानी नै धेरै अमूल्य हुन्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आमा आमा 9 महिना कोखमा बोकेर आमा भन्नुहुन्छ भने बुवा जीवनभर काँधमा बोकेर बुवा भन्नुहुन्छ।
1: पिता पर कुछ पंक्तियां सुनाता हूं सबसे पहले कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया, मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। इंसान क्या जिसमें कि स्वाभिमान नहीं है, वो गीत क्या जिसमें कि कोई तान नहीं है, मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। पिता का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। पिता कैसे बच्चों को पालते हैं, एक नज्म सुनाता हूं पिता पर। उसी के अंश हैं हम सब, उसी का सच्चा नाता है, उसी की परवरिश से अपना जीवन सांसें पाता है, वही बचपन में हमको अपने कंधों पर बिठाता है, हमें उंगली पकड़कर बस वही चलना सिखाता है, हमारे वास्ते जो अपने सब दुख भूल जाता है, पिता कहते हैं हम जिसको, वही अपना विधाता है। पिता उपवास करके अपने बच्चों को खिलाते हैं, पिता बच्चों के सुख में अपने सब दुख भूल जाते हैं, पिता बच्चों को अपनी गोद में मेला घुमाते हैं, पिता बच्चों के सपनों को भी इस दुनिया में लाते हैं, पिता का नाम तो ताजिंदगी ही काम आता है, पिता कहते हैं हम जिसको, वही अपना विधाता है। पिता कहते हैं हम जिसको, वही अपना विधाता है। फलक से चांद सूरज और तारे कौन देता है, मुसीबत से निकलने के इशारे कौन देता है, कदम जब डगमगाते हैं सहारे कौन देता है, मोहब्बत की नदी के हमको धारे कौन देता है, पिता का नाम ही हर जहन में क्यों जगमगाता है, पिता कहते हैं हम जिसको, वही अपना विधाता है। एक ऐसी रोशनी जो उम्र भर तक झिलमिलाती है, पिता की सीख तो अंतिम समय भी काम आती है, पिता वह शय है जिससे हर मुसीबत हार जाती है, पिता वह शय है जिससे हर मुसीबत हार जाती है, सभी रिश्ते हैं मतलब के, पिता ही असल साथी है।

होगे न तुम मंजिल। लहू मस्तिष्क बाजू और पिता ही है धड़कता दिल, पिता है आत्मा जो इस बदन में जान लाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना बिठाता है। पिता बन जाओगे जब उनके दुख सुख जान जाओगे, पिता के दर्द को पीड़ा को तुम पहचान जाओगे, कभी उनकी तरह जब खेत और खलिहान जाओगे, पिता फौलाद की चट्टान थे यह मान जाओगे, पिता मुश्किल घड़ी में हंसता है सबको हंसाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है। अब आगे हैं वो बेटे जो पिता को छोड़ देते हैं, घुटन में जीते हैं ताजा हवा को छोड़ देते हैं, निकलती है जो दिल से उस दुआ को छोड़ देते हैं, समझ लीजिए कि वो अपने खुदा को छोड़ देते हैं। पिता सेवक, पिता मालिक, पिता ही सबका दाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना विधाता है, हमारे वास्ते जो अपने सब दुख भूल जाता है। पिता का नाम तो ता जिंदगी ही काम आता है, पिता का नाम ही हर जहन में क्यों जगमगाता है, वही है धन्य जो चरणों में उनके सर झुकाता है, हमारी जिंदगी हर पल जो फूलों से सजाता है, पिता का साया सर पर हो तो हर मौसम सुहाता है, अंधेरे में पिता उम्मीद का सूरज उगाता है, पिता है आत्मा जो इस वदन में जान लाता है, पिता मुश्किल घड़ी में हंसता है सबको हंसाता है, पिता सेवक, पिता मालिक, पिता ही सबका दाता है, पिता कहते हैं हम जिसको वही अपना दिखाता है।